0: हमेशा के लिए। समाधानम स्नेहम संगीतम अप्रोम।
1: हेवा आई तो ओंगाकु इत्सु मादे मो